मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हराय नमः।

हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो हरि हरि हरि बोलो हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो हरि नित्य नित्य जपिए हरि नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए नित्य नित्य जपिए हरि नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए हरि नाम जी।

निराधार ये करम माता पिता बंधु सख सब पिता मना जन जीवन जन ये कर भक्त जन जीवन जन ये कर राम राम राम श्री राम राम।

आधार ये करम माता पिता बंधु सख सब पिता मना जन जीवन घन ये करम भक्त जन जीवन घन ये करम राम राम राम श्री राम राम।